वातावरण देखकर चकित हो उठे और जब उन्हें मालूम हुआ कि पिता दशरथ अब नहीं रहे और भाई श्री राम 14 बरस के लिए वनवास जा चुके हैं।